एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजली प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

यस लोकप्रिय प्रसारण संस्था एफएम अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90

0: झूले यहाँ सुंदर FM और ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

एक साल मर जाते हो उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया, 50 साल मर गए कहते हो 50 साल जी लिए, स्वर्ण जयंती मनाए। 50 साल मरे, मौत करीब आ रही, जीवन दूर जा रहा है, घड़ा खाली हो रहा है। जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो या जो पास आ रहा है उसके आधार पर? ये कैसा उल्टा गणित, हम रोज मर रहे हैं, मौत करीब सरकती आती। अष्टावक्र कहते हैं विषय है विश्ववत, क्योंकि उन्हें खा खा के हम सिर्फ मरते हैं, उनसे कभी जीवन तो मिलता नहीं। यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात हे प्रिय, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा आर्जव दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, जिससे अमृतत्व मिले, जिससे उसका पता चले जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा क्रोध विष है, क्षमा अमृत है, आर्जव कुटिलता विष है, सीधा सरलपन आर्जव अमृत है, दया कठोरता क्रूरता विष है, दया करुणा अमृत है, संतोष असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता। असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह फैलता चला जाता, विष को फैलाए चले जाता। संतोष जो है उससे तृप्ति, जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं, जो है वो काफी से ज्यादा है, वो है ही काफी से ज्यादा। आंख खोलो जरा देखो, संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर, जीवन को जरा गौर से देखो, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी जरूरत से सदा ज्यादा है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलता ही रहा है, तुमने जो चाहा है वो सदा मिल गया है, तुमने दुख चाहा है तो दुख मिल गया है, तुमने सुख चाहा है तो सुख मिल गया है, तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया है। तुम्हारी चाह ने तुम्हारे जीवन को रचा है, चाह बीज है, फिर जीवन उसकी फसल है। जन्मों जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा है। कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं, जब मिलता है तो कुछ और मिलता है, तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई है, सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था। जैसे तुम चाहते हो सफलता, मिलती है विफलता, तुम कहते हो विफलता मिल रही, चाही तो सफलता थी, लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया, वो विफलता से भीतर डर ही गया है, विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है। और जब जब सफलता चाहेगा तब तक विफलता का ख्याल आएगा, विफलता का ख्याल भी मजबूत होता चला जाएगा। सफलता तो कभी मिलेगी, लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता विफलता में ही बीतेगी। विफलता का भाव संघनीभूत होगा, वो इतना संघनीभूत हो जाएगा कि वही एक दिन प्रकट हो जाएगा। तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी, लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया। लाओजू ने कहा है सफलता चाही विफलता मिलेगी। अगर सचमुच सफलता चाहिए हो सफलता चाहना ही मत, फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता। तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था, अपमान मिल रहा है। सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है। अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है, ढांक लेना चाहता है। सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो, तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, दूसरे मुझे कुछ बना दे, सिंहासन पर बिठा दे, फताकाएं फहरा दे, झंडे उठा ले मेरे नाम के, दूसरे कुछ कर दे। तुम भिकमंगे हो, तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा, और ये अपमान गहन होता जाएगा। लाओत्सु कहता है मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं।
ये सम्मान को पा लेना है। लाओजू कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी, अब हराओगे कैसे? तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है। अब ये जरा उलझा हुआ हिसाब है। इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा, सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही। क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाही उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफल तो हम हैं ही, अब और चाहना क्या है? सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही, अब और चाहना क्या है? परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके, अब और किसका सम्मान चाहते हो? परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया, जीवन दिया, ये सौभाग्य दिया कि आंख खोलो देखो हरे वृक्षों को, फूलों को, पक्षियों को, कान दिए सुनो संगीत को, जलप्रपात के मरमर को, बोध दिया कि बुद्ध हो सको, अब और क्या चाहते हो? सम्मानित तो तुम हो गए, परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया, तुम भिखारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो? उनसे जो तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे। ये बड़ा मजेदार मामला है, दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े भीख मांग रहे, ये भीख मिलेगी कैसे? दोनों भिखारी, तुम किससे सम्मान मांग रहे हो, किसके सामने खड़े हो? ये अपमान कर रहे हो तुम अपना, और यही अपमान गहन होता जाएगा। संतोष का अर्थ होता है देखो जो तुम्हारे पास है, देखो जरा आंख खोल के जो तुम्हें मिला ही है। ये अष्टावक्र की बड़ी बहुमूल्य कुंजी है, ये धीरे धीरे तुम्हें साफ होगी। अष्टावक्र की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है, बड़ी अनूठी, जड़ मूल से क्रांति की है। संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर, क्योंकि असत्य के साथ जो जिएगा वो असत्य होता चला जाएगा। जो असत्य को बोलेगा, असत्य को जिएगा, स्वभावतः असत्य से गिरता चला जाएगा, उसके जीवन से संबंध विच्छिन्न हो जाएंगे, जड़ें टूट जाएंगी। परमात्मा में जड़ें चाहते हो तो सत्य के द्वारा ही वे जड़ें हो सकती, प्रमाणिकता और सत्य के द्वारा ही तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो। परमात्मा से टूटना है तो असत्य का धुआं पैदा करो, असत्य के बादल अपने पास बनाओ। जितने तुम असत्य होते चले जाओगे उतने परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। तू न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है, मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को, इन सब का साक्षी चैतन्य जान। सीधी सीधी बातें, भूमिका भी नहीं। अभी दो वचन नहीं बोले अष्टावक्र ने कि ध्यान आ गया, कि समाधि की बात आ गई। जानने वाले के पास समाधि के अतिरिक्त और कुछ जताने को है भी नहीं। वो दो वचन भी बोले क्योंकि एकदम से अगर समाधि की बात होगी तो शायद तुम चौंक ही जाओगे, समझ ही ना पाओगे। मगर दो वचन और सीधी समाधि की बात आ गई। अष्टावक्र सात कदम भी नहीं चलते, बुद्ध तो सात कदम चले, आठवें कदम पे समाधि। अष्टावक्र तो पहला कदम ही समाधि का उठाते। तू न पृथ्वी है, न जल, न वायु, न आकाश, ऐसी प्रतीति में अपने को थिर कर, मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को, इन सब का साक्षी चैतन्य जान। साक्षी सूत्र है, इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं। देखने वाले बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। ये देह तो जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश, तुम इसके भीतर तो वो दिए हो जिसमें ये सब जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश, वायु प्रकाशित हो रही। तुम दृष्टा हो, इस बात को गहन करो। साक्षीणाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि, ये इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है। साक्षी बनो, इसी से होगा ज्ञान, इसी से होगा वैराग्य, इसी से होगी मुक्ति।
प्रश्न तीन थे, उत्तर एक है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी ही सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये जड़ मूल से क्रांति है। पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते कि अभी ही, पतंजलि कहते हैं करो अभ्यास, यम नियम साधो, प्राणायाम प्रत्याहार आसन शुद्ध करो, जन्म जन्म लगेंगे तब सिद्धि है। महावीर कहते हैं पंच महाव्रत, और तब जन्म जन्म लगेंगे तब होगी निर्जरा, तब कटेगा जाल कर्मों का। सुनो अष्टावक्र को, यदि देहम पृथकृत्य चित्ति विश्राम तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसी। अधुनैव अभी यही इसी क्षण, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी कि देह मैं नहीं हूं, मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूं, ये जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है जो सब देखता है, बचपन था कभी तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा, बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता, आया और गया मैं तो हूं, जवानी नहीं रही तो मैं जवानी तो नहीं हो सकता, आई और गई मैं तो हूं, बुढ़ापा आया जा रहा है तो मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आता है जाता है वो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं तो सदा हूं। जिस पे बचपन आया, जिस पे जवानी आई, जिस पे बुढ़ापा आया, जिस पे हजार चीजें आई और गई, मैं वही शाश्वत हूं। स्टेशनों की तरह बदलती रहती बचपन जवानी बुढ़ापा जन्म, यात्री चलता जाता। तुम स्टेशन के साथ अपने को एक तो नहीं समझ लेते, पूना की स्टेशन पर तुम ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं पूना हूं, फिर पहुंचे मनमाड़ तो ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं मनमाड़ हूं। तुम जानते हो कि पूना आई गई, मनमाड़ आया गया, तुम तो यात्री हो, तुम तो दृष्टा हो, जिसने पूना देखी पूना आई, जिसने मनमाड़ देखा मनमाड़ आया, तुम तो देखने वाले हो। तो पहली बात जो हो रहा है उसमें से देखने वाले को अलग कर लो, देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम, और करने योग्य कुछ भी नहीं है। जैसे लाओसु का सूत्र है समर्पण, वैसे अष्टावक्र का सूत्र है विश्राम, रेस्ट। करने का कुछ भी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान कैसे करें,

तो मैं तो पहले ही राजी था, लेकिन तुम्हें समझने में जरा देर लगी, अब विश्राम करो। ध्यान का आत्यंतिक अर्थ विश्राम है, चित्ति विश्राम में तिष्ठ सी, जो विश्राम में ठहरा देता अपने चेतना को, जो होने मात्र में ठहर जाता, कुछ करने को नहीं, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो मिला ही हुआ है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो उसे कभी खोया ही नहीं, उसे खोया नहीं जा सकता, वही तुम्हारा स्वभाव है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, अनल हक, तुम सत्य हो, कहां खोजते हो, कहां भागे चले जाते हो, अपने को ही खोजने कहां भागे चले जाते हो। रुको, ठहरो, परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में छिपा है। परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा करने वाले में छिपा है। परमात्मा के होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम हो ही। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं चित्ति विश्राम में, विश्राम करो, ढीले छोड़ो अपने को, ये तनाव छोड़ो, कहां जाते, कहीं जाने को नहीं, कहीं पहुंचने को नहीं, और चैतन्य में विश्राम। तो तू अभी ही इसी क्षण अधुनैव सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अनूठा है वचन, नहीं कोई और शास्त्र इसका मुकाबला करता है। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, और न तू कोई आश्रम वाला है, और न आंख आदि इंद्रियों का विषय, असंग और निराकार तू सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। अब ब्राह्मण कैसे टीका लिखे, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं। अब हिंदू इस शास्त्र को कैसे सिर पे उठाएं, क्योंकि उनका तो सारा धर्म वर्ण और आश्रम पे खड़ा है, और ये तो पहले से ही अष्टावक्र जड़ काटने लगे। वो कहते हैं तू कोई ब्राह्मण नहीं है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ये सब बकवास है, ये सब ऊपर के आरोपण है, ये सब राजनीति और समाज का खेल है। तू तो सिर्फ ब्रह्म है, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, और न तू कोई आश्रम वाला है, और न तो यह है कि तू ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कि गृहस्थाश्रम में है, कि वानप्रस्थ, कि संन्यास, कोई आश्रम वाला नहीं। तू तो इन सारी स्थानों के भीतर से गुजरने वाला दृष्टा साक्षी, अष्टावक्र की गीता हिंदू दावा नहीं कर सकते हमारी, अष्टावक्र की गीता सबकी है। अगर अष्टावक्र के समय में मुसलमान होते, हिंदू होते, ईसाई होते, तो उन्होंने कहा होता न तू हिंदू है, न तू ईसाई है, न तू मुसलमान है। अब ऐसे अष्टावक्र को कौन मंदिर बनाए, इसके लिए कौन इसके शास्त्र को सिर पे उठाए, कौन दावेदार बने, क्योंकि ये सभी का निषेध कर रहे हैं। मगर ये सत्य की सीधी घोषणा है, असंग और निराकार तू सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र ये नहीं कहता कि ऐसा तुम जानोगे तो फिर सुखी होगे, वचन को ठीक से सुनना, अष्टावक्र कहते हैं ऐसा जानकर सुखी हो। न त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। सुखी भव, अभी हो सुखी। जनक पूछते हैं कैसे सुख होगा, कैसे बंधन मुक्ति होगी, कैसे ज्ञान होगा। अष्टावक्र कहते हैं अभी हो सकता, क्षण मात्र की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे कल पर छोड़ने का कोई कारण नहीं, स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं। ये घटना भविष्य में नहीं घटती, या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती। जब घटती है तब अभी घटती है, क्योंकि अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं, भविष्य कहां है, जब आता है तब अभी की तरह आता है। तो जो भी ज्ञान को उत्पन्न हुए हैं अभी,

0: उत्पन्न हुए। कभी पर मत छोड़ना, वो मन की चालाकी है। मन कहता है इतने जल्दी कैसे हो सकता है, तैयारी तो कर ले। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं संन्यास लेना, लेंगे कभी, कभी कभी ना लोगे। कभी पर टाला तो सदा के लिए टाला, कभी आता ही नहीं। लेना हो तो अभी, अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं। अभी है जीवन, अभी है मुक्ति, अभी है अज्ञान, अभी है ज्ञान, अभी है निद्रा, अभी हो सकता जागरण। कभी क्यों कठिन होता मन को? क्योंकि मन कहता है तैयारी तो करने दो। मन कहता है कोई भी काम तैयारी के बिना कैसे घटता। आदमी को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लेना है तो वर्षों लगते, डॉक्टरेट करनी है तो 20-25 साल लग जाते, मेहनत करते करते फिर आदमी आके डॉक्टर हो पाता। अभी कैसे हो सकते? अष्टावक्र भी जानते दुकान करनी हो तो अभी थोड़ी खुल जाएगी, इकट्ठा करना पड़े, आयोजन करना पड़े, सामान लाना पड़े, दुकान बनानी पड़े, ग्राहक खोजने पड़े, विज्ञापन भेजना पड़े, वर्षों लगते। इस जगत में कोई भी चीज अभी तो घटती नहीं, क्रम से घटती है। ठीक है, अष्टावक्र भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक घटना यहां ऐसी है जो अभी घटती है, वो परमात्मा है। वो तुम्हारी दुकान नहीं, न तुम्हारा परीक्षालय, न तुम्हारा विश्वविद्यालय। परमात्मा क्रम से नहीं घटता, परमात्मा घट ही चुका है। आंख भर खोलने की बात है, सूरज निकल ही चुका है। सूरज तुम्हारे आंख के लिए नहीं रुका है कि तुम जब आंख खोलोगे तब निकलेगा। सूरज निकल ही चुका है, प्रकाश सब तरफ भरा ही है, अहिर्निश गूंज रहा उसका नाद, ओंकार की ध्वनि सब तरफ गूंज रही है, सतत अनाहत चारों तरफ गूंज रहा है। खोलो कान, खोलो आंख। आंख खोलने में कितना समय लगता है? उतना समय भी परमात्मा को पाने में नहीं लगता। पल तो लगता पलक के झपने में, पल का अर्थ ही होता है जितना समय पलक को झपने में लगता उतना पल, मगर परमात्मा को पाने में पल भी नहीं लगता। विश्व साक्षी असंगो वसी निराकारो सुखी भव, अभी हो सुखी। उधार नहीं है अष्टावक्र का धर्म, नगद कैश। हे व्यापक, धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के, धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्ति ही है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र है, हमारे जीवन की श्वास है, हमारा होना है। धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मान सानी नते विभो। अष्टावक्र कहते हैं हे व्यापक, हे विभावान, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के, ये सब मन की ही तरंगे। बुरा किया, अच्छा किया, पाप किया, पुण्य किया, मंदिर बनाया, दान दिया, सब मन के। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा, तू तो सदा मुक्त है, तू तो सर्वदा मुक्त है। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो हमें घटानी, मुक्ति घट चुकी है हमारे होने में। मुक्ति से बना है ये अस्तित्व, इसका रोआ रोआ रंच रंच मुक्ति से निर्मित है। मुक्ति है धातु जिससे बना है सारा अस्तित्व। सुख स्वतंत्रता स्वभाव है, ये उद्घोषणा। बस समझी कि क्रांति घट जाती है, समझने के अतिरिक्त तो कुछ करना नहीं। ये बात ख्याल में उतर जाए, तुम सुन लो इसे मन भर के बस। तो आज इतना ही कहना चाहूंगा, अष्टावक्र को समझने की चेष्टा भर करना। अष्टावक्र में करने का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि अब कोई तरकीब निकलेगी जो हम करेंगे। अष्टावक्र कुछ करने को कहते ही नहीं, तुम विश्राम से सुन लो। करने को कुछ होने वाला ही नहीं है, इसलिए तुम कॉपी वगैरह नोटबुक लेके मत आना कि लिख लेंगे, कुछ आएगा सूत्र तो नोट कर लेंगे, करके देख लेंगे। करने का यहां कुछ काम ही नहीं, इसलिए तुम भविष्य की फिक्र छोड़ के सुनना। तुम सिर्फ सुन लेना, तुम सिर्फ मेरे पास बैठ के शांत भाव से सुन लेना, विश्राम में सुन लेना। सुनते सुनते तुम मुक्त हो जा सकते हो। इसलिए महावीर ने कहा है कि श्रावक मुक्त हो सकता है सिर्फ सुनते सुनते। श्रावक का अर्थ होता है जो सुनते सुनते मुक्त हो जाए। साधु का तो अर्थ ही इतना है कि जो सुन सुन के मुक्त ना हो सका, थोड़ा कमजोर बुद्धि का है, कुछ करना पड़ा। सिर्फ कोड़े की छाया काफी न थी, घोड़ा जरा कुजात है, कोड़ा फटकारा तब थोड़ा चला, या मारा तो थोड़ा चला, छाया काफी है। तुम सुन लेना, कोड़े की छाया दिखाई पड़ जाएगी। तो अष्टावक्र के साथ एक बात स्मरण रखना, कुछ करने को नहीं है, इसलिए तुम आनंद भाव से सुन सकते हो।
1: हवस् त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै। यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: It's Weekend Classic Radio Show.
1: हिंदी सिनेमा में देखा जाए तो काफी दिल टूटे हैं और कई मिले भी हैं। ये महानगरी जिंदगी का सफर तो कराती ही है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री एक हम सफर दे जाती है। मेरा मतलब है कि हिंदी सिनेमा में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कब ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। रियल लाइफ पार्टनर रियल लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। आज मैं एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने अपने प्यार के बीच कोई दीवार को नहीं आने दिया, ना लोगों को आने दिया, ना मजहब को आने दिया। वो एक्ट्रेस जो हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल है और वो एक्टर जो ओरिजिनल ही मैन है। मैं बात कर रही हूँ हमारे धर्म पाजी और हेमा जी की। वैसे सबको लगता है कि धर्म जी हेमा जी की पहली मुलाकात जो हुई थी वो तुम हसी मैं जवां की शूटिंग के दौरान हुई थी, लेकिन सच में वो इसके पहले भी मिल चुके थे। कहाँ और कैसे और वो क्या बात थी धर्म जी की जिसने हेमा जी का दिल चुरा लिया था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले किशोरदा की आवाज में ड्रीम गर्ल फिल्म से ये गाना डेडिकेटेड टू द वेरी ब्यूटिफुल हेमा जी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनि सूट
5: वाओ
6: अनि मलाई

क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के साथ में जो गाने हैं वो आपको सुना रही हूं, कुछ बेहतरीन गाने हैं चुन के लेकर आई हूं मैं आपके लिए, आपको ये गाने पसंद आ रहे हों। कभी कभी सोचती हूं अगर हम प्यार में उलझे नहीं होते तो आज जिंदगी इतनी सुलझी नहीं होती, है ना। ये एहसास ही कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली और स्ट्रांग कर देता है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि हमारे वीरू और बसंती का साथ जो है वो बहुत पुराना है। लोग मानते हैं कि तुम हंसी मैं जवां फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन

शांत बैठे हुए थे, एकदम ऑपोजिट टू हिज ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी, जहां पर अग्रेसिव और एक्शन हीरो धर्मजी प्ले किया करते थे, वो एक्चुअली शांत बैठे हुए थे, ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। चेहरे पे एक तेज था और साथ में एक मुस्कुराहट भी थी। धर्म जी के जो स्ट्रॉन्ग फीचर्स थे उनके ऊपर हेमा जी ने अपना दिल दे दिया था। उसी समय उन्हें धर्म जी से प्यार हो गया था। लेकिन अगर प्यार 1965 में हो गया था तो शादी में 15 साल क्यों लग गए? 1980 में इन दोनों की शादी हुई थी, क्यों इतना समय लगा? ऐसा क्या हुआ बीच में, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। फिलहाल आपको सुना रही हूँ रफी साहब की आवाज में प्रतिज्ञा फिल्म से ये गाना।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोस्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

प्यार वो नहीं जो मोम की तरह पिघला देता है, प्यार तो वो है जो पेड़ की तरह स्थिर रहकर जीना सिखा देता है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आई होप आपको आज के चुने हुए गाने बहुत पसंद आ रहे हों, काफी दिल से मैंने ये गाने चुने हैं आपके लिए। अच्छा, हम हेमा जी और धर्मपा जी की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के गाने आपको सुना रहे हैं, तो आपको बताती हूँ काफी सारी रुकावटें आई थी इनके प्यार और शादी के बीच में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हेमा जी बहुत एडमिंट थी, उन्हें अपना करियर पहले बनाना था और क्यों ना बनाए। एक बार तमिल फिल्म के डायरेक्टर श्रीधर जी ने हेमा जी को तमिल फिल्म वेनीराडाई, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, लेकिन इस नाम से एक फिल्म थी, उससे रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि वो बहुत पतली हैं और स्टार मटेरियल नहीं है। इस बात को हेमा जी ने दिल पे ले लिया था, काफी हर्ट हुई थी वो ये सुन करके। तब वो ज्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, 15-16 साल की ही थी, लेकिन वो जो ह्यूमिलिएट हुई थी उस समय, तो उन्होंने खुद को प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन मेगा स्टार बन के रहेंगी। तो जब धर्म जी के साथ में उनके प्यार की शुरुआत हुई तो उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो था धर्म जी के लिए, लेकिन उन्होंने धर्म जी को सीधा बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो जल्द ही सक्सेसफुल हो गई, और इंटरेस्टिंगली श्रीधर जी, जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया था 60s में, ही वॉज कंपेल्ड, उन्हें हेमा जी को अपनी मूवी में लेना ही पड़ा। और गहरी चाल करके ये फिल्म आई थी, जिसमें हेमा जी ने भी काफी हम्बल होकर के माफ़ किया श्रीधर जी को और ये फिल्म की थी। आपको पता है 1980 में शादी तो हो गई थी धर्मपा जी और हेमा जी की, लेकिन उसके लिए इन्हें अपना धर्म भी बदलना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र जी चाहते नहीं थे कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ें और फिर शादी करें। तो धर्म जी की पहली बीवी प्रकाश जी, जिनसे सनी और बॉबी हैं, उन्हें उन्होंने छोड़ा नहीं था और हेमा जी से शादी कर ली थी। वैसे आप जानते हैं कि हेमा जी को धर्म जी से पहले भी काफ़ी सारे फिल्मी स्टार्स के रिश्ते आ चुके थे, कौन थे ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले लता जी की आवाज़ में नया जमाना फिल्म से ये गाना।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोस्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर,
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल वेस्ट ब्रीफ्स र पिक्स

0: सधैँभरि
1: पिक्सी ब्रान्डको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्पादनहरू,
2: उच्च स्तरीय 100% सुतीबाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर,
1: जेन्ट्सको लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी
3: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। धर्म जी और हेमा जी की जिंदगी के कुछ पन्ने जो हैं वो आज हम पलट रहे हैं, इनफैक्ट इनकी लव स्टोरी जो है उसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अ टॉपिक दैट आई लव द मोस्ट। मैं बात कर रही थी हेमा जी के बारे में कि इनके दीवाने कुछ कम नहीं थे, आखिर तभी तो ये ड्रीम गर्ल थी, क्योंकि सबके सपनों की रानी तो हमारी हेमा मालिनी जी ही थी। आपको पता है फिल्म मेकर एक्टर गिरीश कर्नाड जी का रिश्ता जो है वो भी आया था हेमा जी के लिए। वो तो इनफैक्ट हेमा जी के माँ बाप ही लेकर के आए थे, उनको बड़े पसंद थे गिरीश जी और वो चाहते थे कि हेमा जी इनसे शादी कर लें, लेकिन हेमा जी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये ज़्यादा जमे नहीं। उसके बाद संजीव कुमार जी का दिल आया था हेमा जी पर, लेकिन उनमें इतना जिगरा नहीं था कि वो सामने सामने हेमा जी को बता दें अपने प्यार के बारे में। तो संजीव कुमार जी ने अपने दोस्त जितेंद्र जी को कहा था कि जाओ जाकर के तुम बात करो हेमा जी से। इनफैक्ट संजीव कुमार जी के तो इस प्रपोजल को मना कर दिया था हेमा जी ने, क्योंकि कुछ नशे की लत वगैरह थी जो संजीव कुमार जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी हेमा जी को। लेकिन जितेंद्र जी जहाँ ये मिडिल मैन बने हुए थे और संजीव जी के दिल की बातें हेमा जी को बताते थे, तो इस दौरान जितेंद्र जी का भी दिल आ गया था हेमा जी पर, इतना कि जितेंद्र जी ने प्रपोज किया हेमा जी को और इनकी साउथ में एंगेजमेंट भी होने वाली थी। तो जब सगाई तक बात पहुंच गई थी तब कैसे धर्म जी सामने आए और फिर अपने रिश्ते की बात की और सीन में वो आ गए, हीरो बन के आ गए, ही मैन बन के आ गए, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको रजिया सुल्तान से लता मंगेशकर जी की आवाज में अगला गाना ऐ दिले नादान। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं आपको बता रही थी हेमा जी और धर्म जी की लव स्टोरी के बारे में, आज उन्हीं के कुछ गाने आपको सुना रही हूं मैं। और मैं आपको बता रही थी कि कैसे जितेंद्र जी और हेमा जी की एंगेजमेंट होने वाली थी। चाहे शोभा जी थी उस समय कहीं ना कहीं दोस्त थी, थोड़ी पसंद थी जितेंद्र जी को, लेकिन हेमा मालिनी जी पर उनका दिल आया हुआ था, दोनों एंगेजमेंट करने वाले थे। और जब धर्म जी को इस बारे में पता चला तो उस समय सच में धर्म गरम हो गए थे। खूब गुस्सा आया धर्म पाजी को इस बात को सुनकर के कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक्चुअली मेरी ड्रीम गर्ल है। अपनी शूटिंग कैंसिल करा के सारा काम छोड़ के धर्म पाजी फ्लाइट लेकर के चेन्नई गए थे, जहां पर जीतू जी और हेमा जी की एंगेजमेंट होने वाली थी। और वहां पहुंच करके सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया था। और फाइनली फिर हेमा जी के मम्मी पापा चाहे पहले नहीं राजी हुए थे, लेकिन फिर बाद में धर्म पाजी ने कुछ ना कुछ करके उन्हें भी राजी कर लिया, एंगेजमेंट टूटी। और उसके बाद में धर्म पाजी का जो सीन है वो हेमा जी के सीन के साथ में जुड़ गया। वैसे धर्म पाजी वॉज रियली रोमांटिक, हाँ हेमा मालिनी जी को ज़्यादा बाहर जाना, घूमना फिरना, डेट पे जाना या लंच पे जाना पसंद नहीं हुआ करता था। तो जितना समय बिता पाते थे धर्म जी हेमा जी के साथ में, वो सेट्स पर ही होता था। तो मैंने सुना है शोले फिल्म की शूटिंग के टाइम पर जब भी इन दोनों के साथ में सीन होते थे, पास पास बैठते थे, रोमांटिक सीन होता था, तो धर्म जी पैसे खिला देते थे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे लाइट मैन को, जिससे कि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कर देता था, लाइट में गड़बड़ी कर देता था, और बार बार वही सीन को शूट करना पड़ता था जिसमें धर्म जी और हेमा जी साथ में हैं और कुछ तो रोमांस चल रहा है। हाउ क्यूट इज दैट। तो चलिए ये एवरग्रीन जोड़ी जो है इन्हीं के नाम, सुनते हैं अगला गाना। हमारे बॉलीवुड के राजा और जानी है हेमा जी और धर्म जी, तो राजा जानी फिल्म से ही सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में अगला गाना। सुनते रहिए आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।
1: One oh four eight.

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। गीत नंबर 32, फिल्म 11,000 लड़कियां।
1: बाप रे।

भाई फिल्मी दुनिया के लिए बहुत ही खास थे 60s के वो साल। 1962 की 30वीं पायदान पर जो गीत आया ना, वो शशि कपूर की एज ए हीरो शायद पहली ही फिल्म थी धर्मपुत्र। बहनों भाइयों जरा तैयार रहिएगा, आज के वॉल्यूम के आखिरी हिस्से में शशि कपूर की आवाज भी आने वाली है। और हाँ, धर्मपुत्र जो फिल्म थी, गजब के डायरेक्टर यश चोपड़ा का दूसरा कदम था बेमिसाल तरक्की की राह पर। इससे कुछ पहले वो बीआर फिल्म्स ही के झंडे तले धूल का फूल भी बना चुके थे। दोनों बड़ी आदर्शवादी बामकसद फिल्में थीं, लेकिन उनसे ये भी पता चलने लगा था कि आगे चलकर यश चोपड़ा रोमांस के भी कैसे कैसे गुल खिला

ओहो भाई, मैं तो गीत में खो ही गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं फिर से जरा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बढ़ता हूँ आगे। अच्छा बहनों भाइयों, अब अपनी यादें ताजा करके मेरे साथ कदम रखिए 1962 की वार्षिक संगीत श्रेणी की पायदान नंबर 28 पर, जिस पर गीत था उस फिल्म का जिससे फिल्मी दुनिया में एक और जबरदस्त फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने अपना पहला कदम रखा था। वो इदारा था राजश्री प्रोडक्शंस, और वो फिल्म थी आरती।

0: अब यहाँ रुक कर हम सालाना संगीत सीढ़ी से जरा हटकर धीरे से बहनों और भाइयों आ जाएंगे गीत माला की छाओ में, मगर कुछ देर तक रहेंगे आरती ही के पास हैं। फिल्म आरती में हीरोइन मीना कुमारी की एक तरफ थे अशोक कुमार और दूसरी तरफ थे प्रदीप कुमार, जिनके बारे में यानी प्रदीप कुमार के बारे में एक बार मीना जी ने मुझे बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताया था।
1: पता नहीं कौन से जन्म का कर्ज देना है मुझे जो प्रदीप जी हर फिल्म में मेरे सामने होते हैं। बड़े भोले से आदमी हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। एक्टिंग का तो शौक है ही, मगर शिकार का जुनून है। नैनीताल में हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, भीमताल का एक किस्सा सुनिए। सड़क पर प्रदीप जी को एक तीतर नजर आ गया, बस लगे ढूंढने रिवॉल्वर। रिवॉल्वर मिला तो गोलियां ढूंढने लगे, बड़े जोर शोर से सड़क पर उतरे और फिर लौट कर अफसोसनाक खबर सुनाई कि चला गया। यानी बटेर इनकी गोलियों का इंतजार करता रहता तो बेहतर था।
0: मगर साहब, शिकारी प्रदीप कुमार और प्यारी मीना कुमारी की क्या जोड़ी जमी थी फिल्म आरती में। लीजिए, उन्हीं दो पर फिल्माया हुआ एक ड्यूएट है आज की छाओ का।

0: अच्छा साहब, अब गीतमाला की छाव में बैठकर एक बड़ी क्लासिक दुरंगी फिल्म 20 साल बाद का गीत सुनिए। भाई, इसे दुरंगी फिल्म इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये थी तो सस्पेंस फिल्म। जाने पहचाने सस्पेंस राइटर और मशहूर जासूसी डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के जन्मदाता आर्थर कॉनन डॉयल की एक कहानी पर आधारित बड़ी डरावनी मर्डर मिस्ट्री। मगर साहब, चार क्या खूबसूरत रसीले अमर गीत थे उसमें। दो तो एन्यूअल गीतमाला तक पहुंचे और दो मधुर गीत रह गए छाओं में, जिनमें से एक था ये
1: सपने।

0: अच्छा सस्पेंस थ्रिलर 20 साल बाद के खतरनाक खूनी विलन के रोल में थे न सिर्फ मशहूर कैरेक्टर एक्टर बल्कि पुराने रेडियो सिलोन के जमाने के बेमिसाल रेडियो कॉम्पेयर मनमोहन कृष्ण जिनके एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फुलवारी में मैंने 1950-51 में हिंदी अनाउंसिंग का काम शुरू किया था। फिर एक साल बाद हमारा आपका गीतमाला प्रोग्राम भी शुरू हुआ जिसकी कहानी गीतमाला की छाओं के शुरू के कुछ वॉल्यूम्स में आपने सुनी ही होगी। बहरहाल 20 साल बाद देखकर मैंने मनमोहन कृष्ण साहब से पूछा था कि अरे मनमोहन चाचा, आप इतने हंसमुख मिलनसार प्यारे इंसान हैं, फिर आपने ऐसा खतरनाक कातिल विलन का रोल क्यों किया? तो मनमोहन जी बोले,
1: एक अर्ज कर दूं कि भगवान ने जो ये छोटी सी बुद्धि मुझे दी है ना, उसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुझे हमेशा से पता था कि मैं कद में कितना 10 फुट -6 फुट हूँ और मेरा थोपड़ा किस किस्म का है, इस थोपड़े पर कौन कौन से थोपड़े अपना एक्सप्रेशन फिट कर सकेंगे। ये तो कहिए कि कैरेक्टर आर्टिस्ट था जो अब तक जिंदा रहा, हीरो होता तो ना जाने कब का गुजर चुका होता।
0: खैर बहनो भाइयों, अब फिल्म 20 साल बाद ही के जरिए हम फिर लौटते हैं 1962 की संगीत सीढ़ी की पायदानों पर, जिसकी पायदान नंबर 27 पर।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

नंबर 25 पर था फिल्म स्त्री का गाना। हाँ साहब, महान सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम के तरकश का एक और हसीन तीर।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम।
1: जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल, मंगलम सोनम चामल, मंगलम सोना स्टीम चामल।

जॉय मुखर्जी और साधना की इस फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना को बड़े चाव से डायरेक्ट किया था राज खोसला ने, मगर प्रोड्यूसर थे फिल्मालय के मशहूर मालिक एस मुखर्जी, जिनकी फिल्में बनाने की टेक्निक कई बार ये होती थी बहनों भाइयों कि वो पहले फिल्म के सारे रोमांटिक गीत तैयार कर लेते थे, फिर उसके बाद उन पर फिल्म की कहानी रची जाती थी। ये टेक्निक मुझे तो भाई बड़ी अजीब सी लगी, मगर मानना पड़ेगा मुखर्जी साहब की कई फिल्में इसी टेक्निक पर बनी और जबरदस्त हिट हुई। बहरहाल अब आगे बढ़िए साहब, सामने है उस वर्ष का गीत नंबर 23।

0: खैर मैं तो भाई अमीन सायानी हूँ और आपके साथ 1962 की पायदान नंबर 23 पर फिल्म मैं चुप रहूंगी के गीत की झलक सुन रहा था। अब हम नंबर 22 पर सुनेंगे झलक फिल्म बात एक रात की।
1: मैं

0: भाइयों, अब ये देखिए सुहाने बादल छा गए और हम फिर छाओ में आ गए। तो 1962 की छाओ का ये सिलसिला शुरू करते हुए आइए हम सभी मर्द झूम के बन जाएं दिलीप कुमार, और लेडीज आप चाहें तो वैजयंती माला बनकर देख सकती हैं हमारा झूमना और हमारा नयन लड़ाना।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: बहनों और भाइयों, आपको शायद पता नहीं होगा, इस फिल्म संगीत सम्राट तानसेन के संगीतकार एसएन त्रिपाठी इसके डायरेक्टर भी थे। जी अरे, बड़े बहुरंगी कलाकार थे एसएन त्रिपाठी साहब, लिखते भी थे और बड़े जबरदस्त कैरेक्टर एक्टर भी थे। लीजिए, इसके बारे में उन्हीं से सुनिए।
1: कहा गया है ना कि पानी तेरा रंग कैसा तो जिस बर्तन में डालो वैसा। अपने आप को आसानी से किसी भी रंग में ढाल लेने की कला मुझ में बचपन से ही रही है, और फिर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो कोई भी मुझे जिस रूप में देख सुनकर खुश होना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके सामने आने का प्रयत्न करता हूँ।
0: और अब त्रिपाठी जी का बोला हुआ एक मशहूर डायलॉग सिर्फ दो शब्दों का सुनिए।

0: शान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में

0: माता दी गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड यहाँको विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरिरहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबिबिएस कारोबार सुविधा, सी आसपास सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
3: कब्जियत, ग्यास, अपच, यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभरको जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर ल्याक्स। 16 प्राकृतिक तत्वको संयोजनले बनेको यो ल्याक्सेटिभ ग्रान्युल्सले अब मेरो पेटलाई सहज बनाएको छ। बिहानको सुरुवात हल्का महसुससँग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर ल्याक्स, प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत, ग्यास, अपच र अम्ल पित्तको लागि। मेक योर डे ह्याप्पी एन्ड जोयफुल। पेट स्वस्थ, जीवन सरल। एसआर ल्याक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
4: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। और उस साल के एक और बड़े मधुर गीत की जो फिल्म थी ना, उसकी कोई भी चीज ज्यादा मशहूर नहीं हुई बहनों और भाइयों। उसके बड़े गुणी नौजवान म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन बैनर्जी भी ज्यादा आगे नहीं आ पाए। और फिल्म का नाम अंग्रेजी में पढ़ने पर लगता था कि ये शायद कुछ गेज के बारे में फिल्म होगी, सखी रॉबिन। मगर फिर ख्याल आया कि ये सखी नहीं, सखी हैं, यानी उदार। तो मेरा ख्याल है ये शायद रॉबिन हुड की कहानी होगी ना। खैर कोई बात नहीं, आप गीत

खैर आप हंसिए हंसिए और मैं अब चुप रहूंगा और छाओं के दो गीतों को डायरेक्ट आपसे बोलने दूंगा। अरे बोलो भाई।

0: चित्रगुप्त के शानदार संगीत से सजे हुए इस गीत को दो मंगेशकर बहनों ने गाया था, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। तो भाई क्यों ना आज हम छोटी बहन उषा की आवाज में बड़ी दीदी लता के बारे में कुछ सुन ले।
1: दीदी सबसे बड़ी और मेरे पिताजी जाने के बाद पूरा परिवार उसने संभाला। हम लोग उसको बोलते थे पिताजी की जगह वो आ गई है। उस बहुत शांत स्वभाव की है, कुछ भी उसके मन के खिलाफ भी बात हो जाए तो कुछ बोलेगी नहीं, शांत बैठी रहेगी और सबको संभालने में वो आगे कदम होता है उसका। अच्छा। लेकिन कभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा नहीं मैंने।
0: अच्छा।
1: और ज्यादातर उसका संगीत या हिंदी काव्य उर्दू काव्य में ज्यादा ध्यान होता है और ज्यादा ज्यादा म्यूजिक की बातें होती हैं।
0: अच्छा, दगाबाज हो बांके पिया वाली फिल्म यानी बर्मा रोड में लता जी का गाया हुआ एक प्यारा सोलो भी था साहब, जो मेरा ख्याल है चित्रगुप्त जी की सबसे नाजुक और स्वीट तर्जों में गिना जा सकता है। उसके बोल थे, जुल्फें उलझी हैं मेरे कंगना में, आके छोड़ा जा सनम। मगर भाई वो गीत अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं मिल पाया, आपको मिल जाए तो जरूर सुनेगा हैं। खैर अब ये बताइए बहनों और भाइयों कि अब तो आखिर आपने मुझ पर हंसना बंद कर दिया है ना? जी आप हंस नहीं रहे, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। वेरी गुड।
2: मुझे

0: मुझे देखकर आपका मुस्कुराना।
1: ये गीत था वार्षिक पायदान नंबर 20 पर और इसकी फिल्म थी ओ एक मुसाफिर एक हसीना जिया, और नंबर 19 पर था फिल्म आरती का एक और बड़ा ही भावुक गीत।

0: मंगलम अब सबै को मंगलम अब घर घर में मंगलम सबै को इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम।
1: जय श्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल, मंगलम सोनम चामल, मंगलम सोना स्टीम चामल, स्वाद र संतुष्टि को लागी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: பேர் சுச்சபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। बहनों और भाइयों, गीतमाला की छाओ में बैठकर आपने स्टार्ट किया है जो आपको सन 1971 के दूसरे हिस्से में भी ले चलेगा और 1972 के पहले हिस्से के हंगामे भी दिखाएगा। मगर भाई, पहले जरा छाओ ही में रहकर ये तो बताइए कि क्या हालचाल है आपका।

0: ये मुखड़ा मैंने लिया गुलजार की फिल्म मेरे अपने से। भाई गुलजार साहब की तो न सिर्फ शायरी अनोखी होती है बल्कि डायरेक्शन भी इतनी पुरअसर कि नए लोग तो खास तौर पर उन्हें स्कूल समझकर उनके साथ काम करने के लिए तड़पते रहते हैं। हमारे असरानी साहब भी उन दिनों नए थे, तो भाई असरानी ही से सुनिए कि गुलजार साहब का डायरेक्शन करने का तरीका उन्होंने कैसा पाया।
1: उनका तरीका बड़ा दोस्ताना है अमीन साहब, वो ऐसा फील नहीं होने देते कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिल्म के सेट पर हैं। फिल्म के सेट पर तो हैं, वो थोड़ा डिसिप्लिन तो होना जरूरी भी है, मगर ऐसा बात करेंगे कि भाई थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा वैसा कर लो, और ऐसा कर लो जैसे तुम करते हो यार रोजमर्रा की जिंदगी में, करो करो करो करो करो ऐसा, तो वो लगता है कि बिल्कुल आराम से और कोई गड़बड़ नहीं और कोई ऐसा नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो करते करते अपना काम निकाल लेते हैं वो।
0: अच्छा भाई, फिल्म मेरे अपने में सलील चौधरी का लाजवाब संगीत था, फिल्म भी गजब की थी, लेकिन अफसोस कि मेरे अपने का एक भी गीत मेरी आपकी गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंचा। पर कोई बात नहीं साहब, हमारे दिलों में और गीतमाला की छांव में तो वो गीत बसे ही हुए हैं ना।

अच्छा दोस्तों, अब ये बताइए, आज 1971 के बाकी हिट गीतों का सिलसिला सालाना संगीत सीढ़ी की किस नंबर की पायदान से शुरू होगा? हाँ, पायदान नंबर 9 से, जिस पर फिल्म मैं सुंदर हूं का वो गीत था जिसमें लीना चंदावरकर की कुल्फी जम रही थी विश्वजीत की दूरी से।

और पायदान नंबर 8 पर उस साल हिट फिल्म अंदाज का गीत था। अंदाज की कहानी औरों से बिल्कुल ही अलग थी साहब। दो शादीशुदा जोड़े, एक जोड़े की पत्नी हेमा मालिनी और पति के गेस्ट रोल में राजेश खन्ना, और दूसरी जोड़ी की पत्नी के गेस्ट अपीयरेंस में सिमी और पति शम्मी कपूर। फिर दो दुर्घटनाएं, राजेश खन्ना और सिमी बिल्कुल गायब, और हेमा की शादी हो जाती है शम्मी कपूर से, जिनके दो बच्चे भी थे। और साहब एक मोड़ पर आकर दोनों बच्चों ने मिलकर याद है कैसे प्यार बढ़ाया था शम्मी।

0: उसी फिल्म में राजेश खन्ना का जो सुपरहिट गीत था ना, वो आप बस थोड़ी देर में सुनेंगे, इंतजार कीजिए। मगर उस साल की पायदान नंबर 7 पर सुनिए राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के एक और हिट गीत की झलक।
1: जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी और उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना की इसी बेमिसाल फिल्म में मैंने पहली बार देखा था अमिताभ बच्चन का चेहरा। मगर बहनों भाइयों, आप जानते हैं मेरी किस्मत ने कैसी जबरदस्त कोशिश की थी मुझे आनंद से भी बहुत पहले अमिताभ से मिलवाने की। हुआ ये था कि जब अमिताभ फिल्मों में दाखिल नहीं हुए थे तो वो दो बार मेरे दफ्तर में आए थे अपनी मधुर खरकदार आवाज का ऑडिशन देने के लिए। मगर इत्तेफाक से दोनों ही बार मैं अपने स्टूडियो में बंद इतना उलझा हुआ था कि उनसे मिल भी नहीं पाया। हाँ, फिर जब बरसों के बाद मुझे पता चला कि रेडियो सलोन के प्रोग्रामों और कमर्शियल्स में बोलने की उम्मीद में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मैं तो भाई सर पकड़ कर बैठ गया कि माय गॉड, इतनी गजब की आवाज वाले अमिताभ बच्चन मेरे स्टूडियो में आए और मैं उनसे नहीं मिल पाया। मगर फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं मिलता तो मेरी ही यूनिट में मैं उन्हें अनाउंसर बना देता और फिर तो जरूर वो रेडियो स्टार बन जाते। और तब तो भाई दो गड़बड़े हो जाती। एक तो ये कि फिल्मी दुनिया एक सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम को खो बैठती, और दूसरे रेडियो में अगर वो छा जाते तो भाई मुझे कौन सुनता है। तो चलिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ साहब। आइए इस बात पर आनंद का वो एकमात्र गीत सुने जो अमिताभ से ताल्लुक रखता था, मगर जिसे स्क्रीन पर गाया था सुमिता सान्याल ने।

0: और अब जरा दिल थाम के सुनिए कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मुझे क्या बताया था उनके अपने पहले फेवरेट स्टार राजेश खन्ना के बारे में।
1: सबसे पहले मैंने राजेश खन्ना की फोटो देखी जब वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट हुए थे।
0: जी,
1: मेरा छोटा भाई मुझसे काफी अरसे से इसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पर जोर दे रहा था और उसने मेरे कई फोटो भी खींच रखे थे।
2: अच्छा, वैसे आप उन दिनों कर क्या रहे थे?
1: मैं उन दिनों कलकत्ते में सर्विस कर रहा था।
2: जी
1: हाँ, तो

0: एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरा भाई मुझे एक कमरे में ले गया और वहां मैंने देखा कि दीवार पर मेरी कई तस्वीरें लगी हुई हैं और बीच में उसने राजेश खन्ना की तस्वीर लगा रखी।
1: ओहो, वो क्यों?
0: ये साबित करने के लिए कि मैं भी फिल्म स्टार बन सकता हूँ।
1: अच्छा।
0: राजेश की वो फोटो देखकर ही मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि इस आदमी से अपनी बन सकती है, और मैं बंबई आने से पहले ही राजेश से मिलने के लिए

0: क्या ये सब कुछ सच है?
1: तो आनंद की शूटिंग के दौरान तो आपने उन्हें काफी करीब से देखा होगा, ये बताइए कैसा पाया आपने राजेश खन्ना को?
0: बड़ी खुशी हुई उनके साथ काम करने में। कुछ तो हम दोनों का स्वभाव भी मिलता जुलता है, इसीलिए काम करने में कोई टेंशन कोई उलझन नहीं हुई। दूसरे राजेश में दिखावा नहीं है, इसलिए उसने ये कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं कितने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूं।
2: अच्छा भाई, चलिए अब अमिताभ की बातें सुनकर जरा जल्दी जल्दी से लौट चलें 1971 की संगीत सीढ़ी पर। उस साल की पायदान नंबर 6 पर भी राजेश खन्ना की फिल्म थी, जिसमें उनकी एक तरफ थी चुलबुली तनुजा और दूसरी तरफ हाथी मेरे साथी।

0: साहब नंबर 4 पर किशोर कुमारम ने किसे पुकारा था?
1: निजनों रे भक्त जनों।
0: ये फिल्म आंसू और मुस्कान का वो गीत था जिसमें हमारे किशोरदा की असली मुसीबत का जिक्र था।
2: अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम, अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम, अरे बम बम नाचे किशोर कुमार, बम बम मको, बम बम मको, बम बम मको, बम बम
0: मको। और ये आई झलक 1971 के सॉन्ग नंबर 3 की। आहा, वो भी क्या फिल्म थी साहब, कटी।

0: प्यार।
1: अच्छा भाई, अब पल भर चैन की सांस लेकर मोहब्बत का एक और बड़ा प्यारा रूप देखिए साहब। उस साल की छाव के एक जरा रेयर, एक जरा कम सुने हुए गाने से, जो बहनों भाइयों आप शायद भूल ही गए होंगे। इसकी फिल्म से तीन ऐसे जबरदस्त लोग जुड़े हुए थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिनका मैं फैन भी था और जूनियर दोस्त भी था। डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास, संगीतकार जयदेव और गीतकार कैफी आजमी। साथ में नौजवान से हीरो भी बड़ी कम उम्र में चल बसे थे, मेरे प्यारे बड़े अच्छे दोस्त जलाल आगा। मगर शुक्र है हीरोइन सिमी गरेवाल अब तक हैं हम सबके बीच और आज भी वैसी की वैसी स्वीट लगती हैं। फिल्म का नाम कवर पर नहीं नहीं नहीं चलिए मैं

मेरे प्यारे बड़े अच्छे दोस्त जलाल आगा। मगर शुक्र है हीरोइन सिमी गरेवाल अब तक हैं हम सबके बीच और आज भी वैसी की वैसी स्वीट लगती हैं। फिल्म का नाम कवर पर नहीं नहीं नहीं चलिए मैं

0: ओके अब सिर्फ दो झलकें बाकी हैं 1971 के दो टॉप हिट गीतों की और फिर 1972 की बारी आने वाली है। 1971 में पायदान नंबर दो पर था फिल्मी दुनिया का शानदार हिट बाय बाय सॉन्ग, मगर फिल्म का नाम था आन मिलो सजना।
1: अच्छा

0: चलते हैं।
1: आकर एक दिन चले जाना तो दस्तूर है भाई दुनिया का। गीतमाला की छाओं में के इस वॉल्यूम नंबर 34 की रिकॉर्डिंग से कुछ अरसा पहले 5 नवंबर 2011 के दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए आसाम के बड़े महान संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका।

जी ने हिंदी फिल्मों में भी बड़ा खूबसूरत संगीत दिया था, जिनका एक नमूना आप शायद गीतमाला की छाओं के अगले पैक में सुनेंगे, अगले वॉल्यूम में नहीं, अगले पैक में। लेकिन आसाम में तो भाई वो बरसों से हर दिल में बसे रहे थे, और जब उनके शव को मुंबई से गुवाहाटी ले जाया गया और दो दिन वहां ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रखा गया, तो उनके आखिरी दर्शन के लिए 5 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। बहन और भाइयों, इस वक्त मैं और कुछ नहीं कहूंगा भूपेन हजारिका साहब के बारे में, बस बजा दूंगा आखिरी अंतरा उस हिट गीत का जो सन 1971 का सबसे लोकप्रिय हिट गीत नंबर 1 था, और जिसके जरिए संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने भी लोकप्रियता की चोटी को छू लिया था।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: महनोर भाइयों, इसी मोड़ पर तू आना ही चाहिए। तन्हाई का वो अमर गीत जो रह गया था उस साल छाव में। याद कीजिए उन सबको जो आज नहीं हैं और कहिए।

मगर दोस्तों अब आंसू पोंछिए, देखिए बादल छट गए और शुरू हो रही हैं 1972 के हिट संगीत की बहारें। उस साल के पायदान नंबर 37 पर आपको अपने घर बुला रहा था जोरू।

0: और ये मैं हूँ।
1: मैं यानी? अरे बाप रे, फिर राजेश खन्ना है। और पायदान नंबर 36 पर था फिल्म कारवां का जुबन।

0: वही याद है ना आपको, उसी फिल्म में मिलन हुआ था रणधीर कपूर और बबीता का, फिल्म में भी और फिर जिंदगी में भी, और दोनों ने एक दूसरे से कहा था,
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
0: लेकिन उस उम्र तक पहुंचने से पहले अफसोस कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मगर ये भी सही है बहनों भाइयों कि जब तक वो साथ रहे उन्हें एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं आता था। उनके प्यार की एक मिसाल दूं आपको छांव से और उसी फिल्म से।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। उन दिनों रणधीर कपूर की कई फिल्में आई थी। कम से कम दो फिल्मों में उनकी हीरोइन कौन थी? जया भादुरी जान। तो उसी साल जब जया से मैंने पूछा था कि क्या रणधीर कपूर आपको कभी अपनी मंगेतर बबीता के बारे में बताते हैं, तो जया बोली,
1: नहीं
2: नहीं बताते। अच्छा, वैसे बबीता सेट पर आती हैं?
1: जी हाँ, कभी कभी।
2: तब डब्बू कैसे बिहेव करते हैं?
1: वैसे तो अपने अंकल यानी शम्मी कपूर की तरह हर वक्त उछल कूद करते रहते हैं, मगर जब उनकी फियांसी बबीता आती हैं तो उनके पास जाकर चुपके से बैठ जाते हैं और लाइक अ जेंटलमैन बात करते हैं।
2: और आपसे क्या बातें किया करते हैं?
1: मुझसे तो ज्यादातर अपनी फिल्म कल आज और कल के बारे में कहते हैं। उसमें मैंने ये किया है, वो किया है, जया तुम्हारा ये ड्रेस अच्छा नहीं है, वो ड्रेस अच्छा नहीं है, जरा मेरी फिल्म देखना तो मालूम होगा।
2: अच्छा, डब्बू की कुछ विशेषताएं?
1: अमीन साहब, वो अपने साथी कलाकारों को सीन बहुत अच्छा समझाते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या न हो। दूसरे, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर काफी है। लंबे लंबे डायलॉग नहीं बोलेंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ करके हंसी मजाक पैदा करने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा भाई, अब चलिए फिर से 1972 के संगीत सीढ़ी पर। पायदान नंबर 34 पर था फिल्म सीमा का गीत। देखिए देखिए।
3: लड़की

अच्छा भाई, अब क्या ख्याल है, यहाँ रुककर जरा गीतमाला की छांव में चलें, जहां दो बड़े ही बेमिसाल गीतों को आपका इंतजार है। एक तो है सलिल चौधरी की रेशमी धुन, जिसके शब्दों के साए सजाए थे योगेश ने। फिल्म का नाम या तो आपके दिल के आईने में या फिर इस पैक के कवर पर, मगर यहां मैं इतना बता दूं कि ये गीत खुद सलिल चौधरी के सबसे पसंदीदा गीतों में शामिल था।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: ओल्ड प्यालेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ
2: चिर परिचय यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।